0: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी 6477022023 6747702 VDEI।
1: लाइसेंस नंबर 10394।
2: तंदूरी तंदूरी खाना खाना है ते तंदूरी बॉयज ही जाना है। बड़ा स्वाद वाला फ्लेवर्ड फूड मिलता है, चिकन टिक्का, तंदूरी श्रिंप, तंदूरी फिश, मलाई चाप, तंदूरी मोमोज, ते हां पनीर दी भुर्जी बिल्कुल ना भुलिया जे। लोकेटेड ने 7171 टोरबरम रोड दे उत्ते, ते दूसरी लोकेशन मैकलोगलन एंड क्वीन ते 905-956-2111 तंदूरी बॉयज।
3: मैनू पता तुहाडी जिंदगी खुशहाल है ते खुशहाली सोहनी लगती है, पर जेकर कोई सीरियस एक्सीडेंट हो जाए या फिर किसी तरह की क्रिटिकल इलनेस का हो जाओ शिकार, तो कौन भरेगा तुहाडे घर की मॉर्गेज, कित्थों आएगी इनकम, किवें चलेगी जिंदगी की गड्डी अगे। अपनी इंश्योरेंस जरूर करवाओ, कॉल करो उमरप्रीत चावला नू, जिन्हां तो मॉर्गेज इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस करवा सकते हो, ते नाल ही विजिटर वीजा इंश्योरेंस, सुपर वीजा, ट्रैवल इंश्योरेंस, RESP ते होर इन्वेस्टमेंट्स लई। हुणे करो कॉल उमरप्रीत चावला नू 6474461616। उमरप्रीत चावला।

0: Eyeglasses, contact lenses, sunglasses, safety glasses. तो विजिट कीजिए अल्फा ऑप्टिकल चिंकोजी एंड विलियम्स पार्क में मौजूद गोल्डन गेट प्लाजा में ब्रैम्पटन में अल्फा ऑप्टिकल एनी एज एनी स्टेज. जी हाँ, उनकी स्पेशल्स देखने के लिए अल्फा ऑप्टिकल .ca पे जाइए. आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-450-5333 पर कॉल कीजिए 9054560733. अल्फा ऑप्टिकल, योर विजन इज योर बिजनेस.
1: Taste of Gordon Dot Samosa and Sweet Factory at all leading grocery stores.

0: शिकार किसी जी को हमारी सबल प्रजाति ने आप सुनाई शिव कन को शिव गुण सुख दियो शत्रन को मन मोहत दियो कट कट के अंतर की जानत पड़े गुरे की तीर प्रचानक चीटी ते कुंचर यस फूला सबल कृपा दृष्टि कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन तेरे सुखी एक एक की तीर प्रचानक
1: हैमिल्टन में आपको कार की रिपेयर करवानी है, विंटराइज करवाना है, नए टायर लगवाने हैं या फिर अपनी उबर की सर्टिफिकेशन ऑथोराइज़ करवानी है तो आप जाइएगा योगीज ऑटो सेंटर 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट, ग्रेट सर्विस एंड ग्रेट प्राइसेस, बेस्ट प्राइसेस आपको मिलेंगी वहाँ पे, कहाँ पे, योगीज ऑटो सेंटर। तो उनकी 70-80 अपनी टैक्सीज हैं, अगर आप स्टोनी क्रीक हैमिल्टन में टैक्सी चलाना चाहते हो या फिर आपने किसी तरह की भी उबेर की सर्टिफिकेशन करवानी है उबर की, तो आप कॉल कीजिएगा योगी ऑटो सेंटर के हैरी को, हैरी को कॉल कीजिएगा 905-547-4444 905-547-6464। योगी ऑटो सेंटर आपके लिए 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट हैमिल्टन, स्टोनी क्रीक डाउनटाउन में मौजूद है, आपके लिए बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन है। तो आज ही अगर आपने अपनी कार को विंटर आने से पहले पहले नए टायर लगवाने हैं, ऑयल चेंज करवाना है, तो आज ही योगीज ऑटो सेंटर जाइएगा 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट।

0: मोरी कछु देवी न जान महादेव को कहते सदा शिव निरंकार काची नित मैं देव आप अपने कुछ रह देते पढ़ लेते दिन दिन कोई की गुमराह न खाना जाए पुसारा यह तुझ सदा है हम संसारा एक है रूप अनूप शंकु पारं कुबयो राम रहे कुपा अंजज जेन जसे तज गेने तुझ पुझ खान बहुल जगेने कहो फूल राजा है बैठा कहो सिमट पयो सदने बैठा सदने श्रेष्ठ पायर दंबव अगर चामे तुम करो
1: सब होई दुष्ट चाचा सके न कोई एक बार

वर्ष का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा माता अपने 9 रूप लेकर घर में आगमन करती हैं। तो ऐसे स्टैचू ही नहीं बल्कि नवरात्रि पूजा थाली कलश कोकट मैंगो लीव्स केतरी पॉट्स और फैंसी डांडिया स्टिक्स भी अवेलेबल है। GTS बिगेस्ट एंड ओरिजिनल डिवाइन शॉप इंडिया सजावट एंड पूजा हट 31 मेलनी ड्राइव यूनिट 5 ब्रैम्पटन 905-458-6808।

0: पतिः पादौ पातु दिलमणिः पातु मित्रोऽखिलं वपुः आदित्यकवचं पुण्यम् अभेद्य वक्ष सन्निभम् सर्वरोगभयादिभ्यो मुच्यते नात्र संशयः संवत्सरमुपासित्वा साम्राज्यपदवीं लभेत्।
1: श्री गणेशाय नमः। अथ श्रीदेवी नमस्ते श्री कुलदेवी कुलाराध्या कुलेश्वरी कुल संरक्षणी माता कौलिक ज्ञान प्रकाशिनी वंदे श्री कुल पूजया कुलाम्बा कुल रक्षिणी वेद माता जगन माता लोक माता हितैषिणी आदिशक्ति समुद्भूता संपूर्ण जगत विश्वबंधम महाघोरम त्राहिमहं शरणागतम त्रैलोक्य हृदयं शोभे देवी त्वं परमेश्वरी भक्तानुग्रहकारिणी त्वं कुलदेवी नमोस्तुते महादेव प्रियंकारी बालानां हितकारिणी कुलवृद्धि करी माता त्राहिमहं शरणागतम चिदग्रीमंडल संभूता राज्य वैभवकारिणी प्रकटीतां सुरेशानी वंदे त्वं राज गौरवं त्वदीये कुले जात है त्वामेव शरणं गत है।

0: ब्रह्मनारद संवादे
1: शनिमंडलपंडरकवचौ संपूर्णं ॐ दधीशंसकुशाराभं चिरोदारवसंभवम्।

0: आप सभी श्रोताओं का घर संसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन हो है सभी को। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय साईं राम, या अली मदद। और आपके लिए बहुत ही प्यारा सा वीकेंड है।
1: डांडिया या गरबा यानी नवरात्रि भारत वर्ष का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। कि नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा माता अपने 9 रूप लेकर घर में आगमन करती हैं। तो ऐसे में दुर्गा माता के सुंदर घर लाना ना भूलें। आइए इंडिया सजावट एंड पूजा हट, और सिर्फ दुर्गा माता स्टैचू ही नहीं बल्कि नवरात्रि पूजा थाली, कलश, कोकोनट, मैंगो लीव्स, केतली पॉट्स और फैंसी डांडिया स्टिक्स भी अवेलेबल है। GTS बिगेस्ट एंड ओरिजिनल डिवाइन शॉप, इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 Melanie Drive, Unit 5, Brampton, 905-458-6808।
0: जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। तो अब पहले तो पितृ पक्ष शुरू होने होगा। अब गणेश उत्सव जो है उससे सारे महाउत्सव जो है हर साल, तो गणेश उत्सव हमने मना लिया, अब आगे बढ़ेंगे। आप सुन रहे हो प्रोग्राम घर संसार और मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा शर्मा। तो अब आपके लिए बहुत प्यारे प्यारे गाने हम आपके लिए पेश करेंगे, बढ़िया बढ़िया बातचीत आपके साथ करेंगे। तो पहले आपको बता दें कि अगर आप अपने घर में इस फेस्टिव सीजन में फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर नया लेके आना चाहते हो, या फिर आपने कोई ऐसी आउटडोर फर्नीचर आपको चाहिए, तो वो सारा सामान ही आपको टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलता है। किचन की गैजेट चाहिए, नया टीवी चाहिए, तो सारा सामान आपको, ये जो सारा सामान है ये आपको टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलता है। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड में मौजूद है। तो दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्फ में है। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाकर आप उनकी स्पेशल देखिए, और फिर ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045 पर कॉल कीजिए, 905-799-0045 पे आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स को कॉल कीजिए। अब अगर आपने मूविंग करनी है तो मूविंग करने के लिए आप एचके मूवर्स को कॉल कीजिएगा। एचके मूवर्स आपके लिए बहुत ही, उनकी सर्विस बढ़िया है, कनाडा भर में आपको मूव करने में मदद करते हैं। तो आज ही अपना ट्रक बुक कर लीजिए, 416-524-6524-6704। तो जो लंदन आसपास के इलाके में लोग रहते हैं उनके लिए बहुत ही खुशी वाली खबर है कि लंदन में अब आपके लिए खुल चुके हैं, जी हाँ, आपके लिए खुल चुके हैं मास्टर कोलिजन डिपो। तो आपका किसी तरह का भी कोलिजन का काम आपने करवाना हो तो मास्टर कोलिजन डिपो पे आप जाइएगा, गोर रोड पे मौजूद है। तो आपको बहुत बढ़िया आपको सर्विस मिलेगी, आपकी कार बैंड ट्रक को एकदम नए जैसा बना देते हैं, बहुत सालों का उनका एक्सपीरियंस है, तजर्बा है। तो जी है आपके लिए मास्टर कोलिजन डिपो। तो अब अगर आपने किसी किस्म की भी आपको जैसे मैंने कहा कि कोलिजन का काम करवाना है तो मास्टर कोलिजन डिपो लंदन में गोर रोड पे मौजूद है।
2: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारी आइटमा $475 पर पाउंड तो शुरू ने, बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तो आते इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स उन 3 लोकेशंस तो सर्व करते ने, 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्गिन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी लिए कॉल करो 416-213-1135-416-213-1165।
0: जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। अब अगर आपने किसी किस्म की भी आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, बेचनी है टोरंटो आसपास के इलाके में, तो आप नसीब ठंड को कॉल कर सकते हो। आइए अब आपको एक बहुत ही प्यारा सा पंजाबी का गीत सुनाते हैं। लेट्स गो टू, तो थैंक्सगिविंग आने वाला है अभी, तो लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल पंजाबी सॉन्ग।

0: सजनी ले चलो नदिया के पास।
1: जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। उम्मीद रख रही हूँ कि आपको जरूर गाना पसंद आ रहा होगा। तो इसी तरह हम आपका खूब अच्छा मनोरंजन करेंगे। तो आइए प्रोग्राम को लेके आगे बढ़ते हैं। तो आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार। हैमिल्टन वासियों, की तुसी अपनी अगली कार लभ रहे हो ता अज ही पहुंचो बीबीटी रॉकक्लिफ ऑटो हैमिल्टन, तुहाडा अपना लोकल कार डीलरशिप। इत्थे ही हैमिल्टन विच साडे कोल हर बजट लई गड्डियां उपलब्ध हन, सिर्फ 5000 तो लैके $1,00,000 तक। ते फाइनेंस दी चिंता ना करो, जस्ट 5.2% तो शुरू। अते हर तरह दे क्रेडिट वाले कस्टमर्स लई फाइनेंसिंग ऑप्शंस अवेलेबल हन। जे तुसी हैमिल्टन विच लोकल रहंदे हो ता साडे कोल आओ, साडी लोन तुहाडी सिचुएशन दे हिसाब नाल तुहाडे लई सब तो वधिया पॉसिबल रेट अते डील लभण लई पूरी कोशिश करेगी। ते जे तुहानू नवें टायर्स दी लोड है तो वो भी मिलेंगे। चार टायर दा सेट सिर्फ 299 तो शुरू। हुण सुनो, AM530 लिसनर्स लई खास ऑफर। जदों तुसी बीबीटी रॉकक्लिफ ऑटो हैमिल्टन आओ, सानू सिर्फ ए दसो, मैं AM530 ते मीरा शर्मा तो तुहाडे बारे सुनिया है, अते तुहानू मिलेगा तुहाडी व्हीकल परचेस ते $500 ऑफ। जी हां, $500 दी सीधी बचत। तां फिर देर किस गल दी, अज ही विजिट करो बीबीटी रॉकक्लिफ ऑटो हैमिल्टन। कॉल करो 365-384-3840। दोबारा सुनो 365-384-3840 365-384-3840 बीबीटी रॉकक्लिफ ऑटो। ये तुहाडे वास्ते बड़ा वधिया मकाम है। तो आओ तुहानू एक होर बड़ा वधिया गीत सुनांदे आ इसे दे नाल। Let's go to this beautiful song.

आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है घर संसार में। उम्मीद रख रही हूँ कि आपको जरूर प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। तो आप के लिए बहुत अच्छे अच्छे गीत आपके लिए पेश करेंगे, बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम आपके लिए पेश करेंगे। तो आप हमारे साथ बस जुड़े रहिएगा। तो जैसे मैंने कहा कि अगर आपने अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर बढ़िया क्वालिटी का लेके आना है और टीवी बढ़िया लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला चाहिए, किचन की गैजेट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली चाहिए, तो आप जाइएगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है। तो दूसरी लोकेशन आपके लिए उनकी ग्वाल्फ में है। तो आप और जानकारी के लिए टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइएगा और फिर उनको कॉल कीजिएगा अपने ऑर्डर बुक करने के लिए। 905-799-0045 पे आप कॉल कर सकते हैं। आप सुन रहे हो प्रोग्राम घर संसार। तो अब अगर आपको मूव करना है तो एचके मूवर्स को आप कॉल कीजिएगा। एचके मूवर्स आपको मदद करते हैं कनाडा भर में मूव करने में। तो एचके मूवर्स का नंबर आप लिख लीजिए, 416-524-4416-524-6704 पे आप उनको कॉल कर सकते हैं। तो आप सुन रहे हो प्रोग्राम घर संसार। हैमिल्टन वासियों की तुसी अपनी अगली कार लभ रहे हो, आज ही पहुंचो बीबीटी रॉकलिफ ऑटो हैमिल्टन, तो अपना लोकल कार डीलरशिप इत्थे ही हैमिल्टन।

जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। आप सुन रहे हो प्रोग्राम घर संसार। तो अब अगर आपने किसी किस्म की भी आपको अपने कलीजन का काम करवाना हो तो मास्टर कलीजन जीपू लंदन में गोर रोड पे मौजूद है। masterkalijanjeepu.com पे जाकर आप और जानकारी ले सकते हो। अब हमारे प्रोग्राम का समय समाप्ति की तरफ है, तो मैं यहीं पे आपसे विदा लेती हूँ और उम्मीद रखती हूँ कि आपका जो पूरा वीक है बहुत अच्छा गुजरेगा। तो आजकल बच्चे स्कूल वापस चले गए हैं, तो जहाँ पे भी बस उनकी रुकती है बच्चों को उतारने के लिए, जहाँ उनको पिक करने के लिए, तो आप जरूर स्टॉप करिएगा उसके लिए। बच्चों की आपकी सुरक्षा के लिए भी, बच्चों की सुरक्षा के लिए भी। और अभी वीकेंड है, मौसम बहुत बढ़िया चल रहा है, तो एंजॉय कीजिएगा। बहुत सारी इवेंट्स हो रही हैं। नियाग्रा फॉल में 3 दिन का म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा है, 18, 19 और 20 सितंबर के लिए 3 दिन का है। तो जहाँ पे जो स्टैनले रोड पे कन्वेंशन सेंटर है, तो स्कोशिया कन्वेंशन सेंटर, वहीं पे ये म्यूजिक फेस्टिवल नियाग्रा फॉल में हो रहा है। बहुत ही बढ़िया है, बहुत सारे लोग एंजॉय कर रहे थे कल रात को मैंने देखा, और आज शाम को भी बहुत सारे लोग नियाग्रा फॉल में आएंगे, बहुत एंजॉय करेंगे। तो आप भी जरूर आइएगा, एंजॉय कीजिएगा और अपने साथ अपने दोस्तों मित्रों को भी एंजॉय करवाइएगा। तो मैं आपको भूले बिसरे कोशिश करती हूँ कि जो गाने इतने ज्यादा प्ले नहीं किए जाते हैं, भूले बिसरे से हो गए हैं, तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि आपको ऐसे ही गीत सुनाओ ताकि आपको थोड़ा मजा आए और मुझे भी सुनाने में मजा आए और आपको सुनने में मजा आए, ठीक है ना? तो नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत भला, हैव ए वंडरफुल वीक एंड ए सेफ वन। और आप जरूर अपना किसी ना किसी चीज में पार्टिसिपेट कीजिए, चाहे वॉक कीजिए, रन कीजिए। और कल 20 सितंबर को आपके लिए जो है टेरी फॉक्स रन है, तो मैं हर साल उसमें जाती हूँ, 5 किलोमीटर वॉक करती हूँ। तो राम मंदिर वाले गणेश विसर्जन बोट क्रूज भी है उनका, तो मेरा बड़ा मन था जाने का, लेकिन मैं जो हर साल करती हूँ टेरी फॉक्स रन के लिए जाती हूँ, वो मैं जरूर करूंगी 5 किलोमीटर। सो ऑल द बेस्ट। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत भला।

करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में

0: Glasses, contact lenses, sunglasses, safety glasses. तो विजिट कीजिए अल्फा ऑप्टिकल चिंकोजी एंड विलियम्स पार्क में मौजूद गोल्डन गेट प्लाजा में ब्रैम्पटन में अल्फा ऑप्टिकल एनी एज एनी स्टेज. जी हाँ, उनकी स्पेशल देखने के लिए अल्फा ऑप्टिकल .ca पे जाइए. आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-450-5080 पर कॉल कीजिए 9054560733. अल्फा ऑप्टिकल, योर विजन इज योर बिजनेस.
1: दिल कर रहे हैं ताही का सिद्ध करन लगे हैं. जरा सुन के सोने हो.

0: fermare. Se mi prende poi, se mi come su che Dio, se prende poi, ma non mi guarda Dio. Fate, fate, Dio, non fate, Dio, già, ma tu fai le cuore, e ti le facciano, e ti le pronunciare a se tu no. Sapare che padre, ci fate pulla, senta mi preoccupare, e tu che so che pare, esatto, mi pensi che,
1: आपको कार की रिपेयर करवानी है, विंटराइज करवाना है, नए टायर लगवाने हैं, या फिर आपने उबर की सर्टिफिकेशन ऑथोराइज करवानी है, तो आप जाइएगा योगीज ऑटो सेंटर 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट. ग्रेट सर्विस एंड ग्रेट प्राइसेस, बेस्ट प्राइसेस आपको मिलेंगी वहाँ पे. कहाँ पे? योगीज ऑटो सेंटर. तो उनकी 70-80 अपनी टैक्सीज हैं. अगर आप स्टोनी क्रीक हैमिल्टन में टैक्सी चलाना चाहते हो, या फिर आपने किसी तरह की भी उबेर की सर्टिफिकेशन करवानी है उबर की, तो आप कॉल कीजिएगा योगीज ऑटो सेंटर के हैरी को. हैरी को कॉल कीजिएगा 905-547-4464, 905-547-6464. योगीज ऑटो सेंटर आपके लिए 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट हैमिल्टन, स्टोनी क्रीक डाउनटाउन में मौजूद है. आपके लिए बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन है. तो आज ही अगर आपने अपनी कार को विंटर आने से पहले पहले नए टायर लगवाने हैं, ऑयल चेंज करवाना है, तो आज ही योगीज ऑटो सेंटर जाइएगा 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट.

मोड़ी कछ तेरे न जान महादेव को कहते सदा शिव निरंकार काजी नित्य मैं देव आप अपने कुछ रह देते परण तेन तेन कोई पीती तुम्हरा न खाना जाए पसारा कहते भी सदा है हम संसारा एक है रूप अनूप शब्द रूपा रूप भयो राम रहे पूपा Good job.

सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा माता अपने 9 रूप लेकर घर में आगमन करती है। तो ऐसे स्टैचू ही नहीं बल्कि नवरात्रि पूजा थाली, कलश, कोकट, मैंगो लीव्स, केतली पॉट्स और फैंसी डांडिया स्टिक्स भी अवेलेबल है। GTS बिगेस्ट एंड ओरिजिनल डिवाइन शॉप, इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 41 मेलनी ड्राइव, यूनिट 5, ब्रैम्पटन, 9054586808।

यत्र त्रिप्रिया पुष्करी पुरा त्रिपुरारिस्य कृत्वा जगाद त्रिपुरं पुरा ममोच ब्रह्मा यत्र मधुकैटभयोर्भयात्।

0: आप सभी श्रोताओं का घर संसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है। सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय साईं राम, या अली मदद। और आपके लिए बहुत ही प्यारा सा वीकेंड है।
1: डांडिया या गरबा यानी नवरात्रि भारत वर्ष का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। कि नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा माता अपने 9 रूप लेकर घर में आगमन करती हैं। तो ऐसे में दुर्गा माता के सुंदर घर लाना ना भूलें। आइए इंडिया सजावट एंड पूजा हट, और सिर्फ दुर्गा माता स्टैचू ही नहीं बल्कि नवरात्रि पूजा थाली, कलश, कोकोनट, मैंगो लीव्स, केतरी पॉट्स और फैंसी डांडिया स्टिक्स भी अवेलेबल है। GTS बिगेस्ट एंड ओरिजिनल डिवाइन चार इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 मेलनी ड्राइव, यूनिट 5, ब्रैम्पटन, 905-458-6808।
0: जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। तो अब पहले तो पितृ पक्ष शुरू होने होगा। अब गणेश उत्सव जो है उससे सारे महाउत्सव जो है हर साल, तो गणेश उत्सव हमने मना लिया, अब आगे बढ़ेंगे। आप सुन रहे हो प्रोग्राम घर संसार और मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा शर्मा। तो अब आपके लिए बहुत प्यारे प्यारे गाने हम आपके लिए पेश करेंगे, बढ़िया बढ़िया बातचीत आपके साथ करेंगे। तो पहले आपको बता दें कि अगर आप अपने घर में इस फेस्टिव सीजन में फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर नया लेके आना चाहते हो, या फिर आपने कोई ऐसी आउटडोर फर्नीचर आपको चाहिए, तो वो सारा सामान ही आपको टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलता है। किचन की गैजेट चाहिए, नया टीवी चाहिए, तो सारा सामान आपको, ये जो सारा सामान है ये आपको टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलता है। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड में मौजूद है। तो दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्फ में है। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाकर आप उनकी स्पेशल देखिए, और फिर ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045 पर कॉल कीजिए, 905-799-0045 पे आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स को कॉल कीजिए। अब अगर आपने मूविंग करनी है तो मूविंग करने के लिए आप एचके मूवर्स को कॉल कीजिएगा। एचके मूवर्स आपके लिए बहुत ही, उनकी सर्विस बढ़िया है, कनाडा भर में आपको मूव करने में मदद करते हैं। तो आज ही अपना ट्रक बुक कर लीजिए, 416-524-6524-6704। तो जो लंदन और आसपास के इलाके में लोग रहते हैं उनके लिए बहुत ही खुशी वाली खबर है कि लंदन में अब आपके लिए खुल चुके हैं, जी हाँ, आपके लिए खुल चुके हैं मास्टर कोलिजन डिपो। तो आपका किसी तरह का भी कोलिजन का काम आपने करवाना हो तो मास्टर कोलिजन डिपो पे आप जाइएगा, गोर रोड पे मौजूद है। तो आपको बहुत बढ़िया आपको सर्विस मिलेगी, आपकी कार बैंड ट्रक को एकदम नए जैसा बना देते हैं, बहुत सालों का उनका एक्सपीरियंस है, तजर्बा है। तो जी है आपके लिए मास्टर कोलिजन डिपो। तो अब अगर आपने किसी किस्म की भी आपको जैसे मैंने कहा कि कोलिजन का काम करवाना है तो मास्टर कोलिजन डिपो लंदन में गोर रोड पे मौजूद है।
2: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे भाजी दिया सारी आइटमा $475 पर पाउंड तो शुरू ने, बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स। हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने, 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्गिन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी लई कॉल करो 416-213-1135-016-213-1165।
0: जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। अब अगर आपने किसी किस्म की भी आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, बेचनी है टोरंटो आसपास के इलाके में, तो आप नसीब ठंड को कॉल कर सकते हो। आइए अब आपको एक बहुत ही प्यारा सा पंजाबी का गीत सुनाते हैं। लेट्स गो टू, तो थैंक्सगिविंग आने वाला है अभी, तो लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल पंजाबी सॉन्ग।

आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है घर संसार में। उम्मीद रख रही हूँ कि आपको जरूर प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। तो आप के लिए बहुत अच्छे अच्छे गीत आपके लिए पेश करेंगे, बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम आपके लिए पेश करेंगे। तो आप हमारे साथ बस जुड़े रहिएगा। तो जैसे मैंने कहा कि अगर आपने अपने घर में फ्रिज स्टोव वाशर ड्रायर बढ़िया क्वालिटी का लेके आना है और टीवी बढ़िया लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला चाहिए, किचन की गैजेट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली चाहिए, तो आप जाइएगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है। तो दूसरी लोकेशन आपके लिए उनकी गोल्फ में है। तो आप और जानकारी के लिए टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइएगा और फिर उनको कॉल कीजिएगा अपने ऑर्डर बुक करने के लिए। 905-799-0045 पे आप कॉल कर सकते हैं। आप सुन रहे हो प्रोग्राम घर संसार। तो अब अगर आपको मूव करना है तो एच के मूवर्स को आप कॉल कीजिएगा। एच के मूवर्स आपको मदद करते हैं कनाडा भर में मूव करने में। तो एच के मूवर्स का नंबर आप लिख लीजिए, 416-524-8004, 416-524-6704 पे आप उनको कॉल कर सकते हैं। तो आप सुन रहे हो प्रोग्राम घर संसार। अते हैमिल्टन वासियों की तुसी अपनी अगली कार लभ रहे हो, आज ही पहुंचो बीबीटी रॉकलिफ ऑटो हैमिल्टन, तुहाडा अपना लोकल कार डीलरशिप। इत्थे ही हैमिल्टन विच साडे कोल हर बजट लई गड्डियां उपलब्ध हन, सिर्फ 5,000 तों लै के $1,00,000 तक। ते फाइनेंस दी चिंता ना करो, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 5.49% तों शुरू, अते हर तरह दे क्रेडिट वाले कस्टमर्स लई फाइनेंसिंग ऑप्शंस अवेलेबल हन। जे तुसी हैमिल्टन विच लोकल रहिंदे हो तां साडे कोल आओ, साडी लोकल टीम तुहाडी सिचुएशन दे हिसाब नाल तुहाडे लई सब तों वधिया पॉसिबल रेट अते डील लभण लई पूरी कोशिश करेगी। ते जे तुहानू नवें टायर्स दी लोड़ है तां ओह वी मिलणगे, 4 टायर्स दा सैट सिर्फ 299 तों शुरू। ਹੁਣ ਸੁਣੋ AM530 ਲਿਸਨਰਸ ਲਈ ਖਾਸ ਆਫਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਬੀਟੀ ਰੌਕਲਿਫ ਆਟੋ ਹੈਮਿਲਟਨ ਆਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਂ AM530 ਦੇ ਮੀਰਾ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਹੀਕਲ ਪਰਚੇਸ ਤੇ $500 ਆਫ। ਜੀ ਹਾਂ, $500 ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬੱਚਤ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਬੀਬੀਟੀ ਰੌਕਲਿਫ ਆਟੋ ਹੈਮਿਲਟਨ। ਕਾਲ ਕਰੋ 365-384-4840, तो आ रहा सुनो 365-384-3840। बीबीटी रॉकक्लिफ ऑटो हैमिल्टन, लोकल सर्विस, ग्रेट सिलेक्शन, ग्रेट डील्स, बीबीटी रॉकक्लिफ ऑटो हैमिल्टन। तो आइए अब आपको एक बहुत ही प्यारा सा गीत और सुनाते हैं। तो अगर आप को किसी किस्म की भी आपने गाड़ी की आपने कोलिजन का काम करवाना है तो आपके लिए आई लव आपके लिए हैमिल्टन में, आपके लिए लंदन में, मैं कह रही हूँ हैमिल्टन में, लंदन में आपके लिए अब मास्टर कोलिजन डिपो खुल चुके हैं। तो वहां पे आपकी कार बैंड ट्रक को एकदम नए जैसा बना देंगे। गोर रोड पे मौजूद है लंदन में। तो मास्टर कोलिजन डिपो .com पर जाकर आप उनके बारे में और जानकारी ले लीजिए।

जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। आप सुन रहे हो प्रोग्राम घर संसार। तो अब अगर आपने किसी किस्म की भी आपको अपने कलिजन का काम करवाना हो तो मास्टर कलिजन जीपू लंदन में गोर रोड पे मौजूद है। masterkalijanjeepu.com पे जाकर आप और जानकारी ले सकते हो। अब हमारे प्रोग्राम का समय समाप्ति की तरफ है, तो मैं यहीं पे आपसे विदा लेती हूँ और उम्मीद रखती हूँ कि आपका जो पूरा वीक है बहुत अच्छा गुजरेगा। तो आजकल बच्चे स्कूल वापस चले गए हैं, तो जहाँ पे भी बस उनकी रुकती है बच्चों को उतारने के लिए जहाँ उनको पिक करने के लिए, तो आप जरूर स्टॉप करिएगा उसके लिए। बच्चों की आपकी सुरक्षा के लिए भी, बच्चों की सुरक्षा के लिए भी। और अभी वीकेंड है, मौसम बहुत बढ़िया चल रहा है, तो एंजॉय कीजिएगा। बहुत सारी इवेंट्स हो रही हैं। नियाग्रा फॉल में 3 दिन का म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा है, 18, 19 और 20 सितंबर के लिए 3 दिन का है। तो जहाँ पे जो स्टैनले रोड पे कन्वेंशन सेंटर है, तो स्कोशिया कन्वेंशन सेंटर, वहीं पे ये म्यूजिक फेस्टिवल नियाग्रा फॉल में हो रहा है। बहुत ही बढ़िया है, बहुत सारे लोग एंजॉय कर रहे थे कल रात को मैंने देखा, और आज शाम को भी बहुत सारे लोग नियाग्रा फॉल में आएंगे, बहुत एंजॉय करेंगे। तो आप भी जरूर आइएगा, एंजॉय कीजिएगा और अपने साथ अपने दोस्तों मित्रों को भी एंजॉय करवाइएगा। तो मैं आपको भूले बिसरे कोशिश करती हूँ कि जो गाने इतने ज्यादा प्ले नहीं किए जाते हैं, भूले बिसरे से हो गए हैं, तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि आपको ऐसे ही गीत सुनाओ ताकि आपको थोड़ा मजा आए और मुझे भी सुनाने में मजा आए और आपको सुनने में मजा आए, ठीक है ना? तो नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत भला, हैव ए वंडरफुल वीक एंड ए सेफ वन। और आप जरूर अपना किसी ना किसी चीज में पार्टिसिपेट कीजिए, चाहे वॉक कीजिए, रन कीजिए। और कल 20 सितंबर को आपके लिए जो है टेरी फॉक्स रन है, तो मैं हर साल उसमें जाती हूँ, 5 किलोमीटर वॉक करती हूँ। तो राम मंदिर वाले गणेश विसर्जन बोट क्रूज भी है उनका, तो मेरा बड़ा मन था जाने का, लेकिन मैं जो हर साल करती हूँ टेरी फॉक्स रन के लिए जाती हूँ, वो मैं जरूर करूंगी 5 किलोमीटर। सो ऑल द बेस्ट। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत भला।

करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में

0: तेजी शुक्रवार शनिवार एतवार, खास तौर ते अपलायंस जंक्शन वैसे तां रोज़ाना ओपन ने, पर जदों वीकेंड हुंदा, जदों वीकेंड मौके, जदों अच्छियां डील्स इन्हां कोल लगदियां ने ते तुहाडे कोल फिर जाण दा समां वी हुंदा ते तुसीं क्यों ना जाओ। सो अपलायंस जंक्शन जी इक्को इक स्टॉप है, जंक्शन है मेजर होम अपलायंसेस दा। तुसीं एक एक अपलायंस लैना या फिर पूरा बंडल तुसीं अपने घर दे लई लैना ते अच्छे प्राइजेस तुहानूं इत्थों बिल्कुल मिलणगे, अच्छे ब्रांड्स, अच्छे प्राइजेस। ते जी लोकेशंस इन्हां दियां दो ने, एयरपोर्ट ते क्लार्क ते इन्हां दी पहली लोकेशन है, ते दूसरी लोकेशन जो है, जो पुरानी लोकेशन इन्हां दी, रिवर मॉन प्लाजा मिसी सागा ते स्टील्स ते भी बिल्कुल सही चल रही है। ते तुसी जी आओ, वेखो परखो अपलायंसेस नू, नवे मॉडल्स वेखो, नवियां फीचर्स वेखो ते अच्छे बेस्ट प्राइजेस दे विच जी लैके जाओ। सो अपलायंस जंक्शन तुसी जरूर पहुंचना है ते फोन राही भी तुसी जो प्रोग्राम दे विच जो मैं नंबर दे रही हां, फोन राही भी तुसी इन्हां नू संपर्क कर सकते हो ते डील्स बारे वेरवा जो है कॉल ते लै सकते हो। नंबर 905-450-0054, 905-450-0054 ते अपलायंस जंक्शन नू कॉल हो सकती है जी। जिथे जी जो एक हाई स्पीड रेल लाइन जो है वो प्रपोज हुई है टोरंटो ते क्यूबेक सिटी दे विचकार, उथे चलो एक पासे ता एक धर जो है इस गल नू मान रहा है कि यह एक बिजी रूट है, एक बिजी कॉरिडोर है, ते इस दे विच जो है फायदा जो है वो काफ़ी होना है। ते जो कंपनी जो है इस नू तैयार करेगी भी, जिन्हां ने यह प्रपोजल दिता है वो भी कहती है कि दुनिया भर दे विच अजिहे केसेस उन्होंने वेखे ने कि इस तरह की कंडीशनस दे विच जिथे एक अच्छी जो पॉपुलेशन जो है उस दे नाल जुड़ी हुई है, उत्थे जी यह एक अच्छा प्रोजेक्ट है। ते टोरंटो क्यूबेक सिटी कॉरिडोर जिथे कैनेडा दा सब तो वड्डा इकोनॉमिक रीजन है, 17 मिलियन लोगों का जिथे घर है, जिथे आप कह सकते हैं कि 41% कैनेडा की पॉपुलेशन है ते 40% तो वध जो है वह कैनेडा का GDP इतों जनरेट हुंदा है। उत्थे अजिहियां कंडीशनस दे विच जो इन्हां दा कहना है कि हाई स्पीड रेल जो है वह सक्सैस ही होवेगी। उत्थे जी दूसरे पासे जो वसनीक ने, जो रूरल क्यूबेक दे खास तौर ते वसनीक ने, वह इस गल दी जो है वह विरोधता कर रहे ने, इस गल दे विच वह जो है इस नू सही नहीं समझते। वो चाहते ने कि यह जो प्रोजेक्ट है, ये जो प्रपोजल है हाई स्पीड रेल लाइन का, इस नू वापस ले लिया जावे। उन्हों का कहना है कि साडा जो फार्मिंग कम्युनिटी है, साडे जो खेत ने, इस दे विच उन्हां ते बहुत बुरा असर जो है वो पैण वाला है, क्योंकि जमीन जो है फिर इस कॉरिडोर नू बनाउण दे विच एक्वायर होनी ही है। ते जदों उन्होंने कहा कि 3,000 करीब एकड़ जो जमीन जो है इस दे विच जो है वह साड़ी अक्वायर होनी है, खराब होनी है, जिथे फर्टाइल जो लैंड है वह साडा फार्मिंग बिजनेस जो है वह खराब होना है, ते असी नहीं चाहते कि यह लाइन बने। ते इन्हां ने इस हफ्ते कल सवेरे जो है जो रूरल क्यूबेक दे विच
1: मेरी बेटी की क्लास में 33 बच्चे हैं। वो बताती है कि वहाँ किसी भी चीज की पूरी सुविधा नहीं है, भीड़ से भरी क्लास और शोर परेशान कर देता है और मदद कभी भी पूरी नहीं पड़ती। ये इसलिए है क्योंकि डग फोर्ड ने 2018 से हमारे सरकारी स्कूलों के बजट में से $6.5 बिलियन काट दिए हैं। हमारे बच्चे इससे बेहतर के हकदार हैं। आइए सरकार से कहें, हमारे बच्चों में निवेश करें, क्लास साइज ठीक करें। एलिमेंट्री टीचर्स फेडरेशन ऑफ ऑन्टेरियो की ओर से एक संदेश।
2: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca.
0: इस दे विच जो है वह फार्मर्स का समर्थन दिता। उन्होंने भी कहा कि हाई स्पीड यह रेल कारण जो है जो फार्मर्स नू जो नुकसान होना

0: Salang.
1: विजिटर टू कनाडा आउट ऑफ प्रोविंस कवरेज बाय करना चाहते हो या अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स ले सुपर वीजा इंश्योरेंस दे बेस्ट रेट्स बेस्ट प्लान्स अते बेस्ट ऑप्शन बारे या फिर 40-45% दा डिस्काउंट लेना चाहते हो तो हुणे कॉन्टैक्ट करो 647-400-6862.

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: राजधानी राजधानी राजधानी
0: Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.
2: Garnishment, power of sale notice, bank walo paise di mang, unhe hi sanu call karo. Phir to

0: कोई नहीं कर सकेगा तंग। कर्जा माफ कराओ, 100% मानसिक शांति पाओ, कलेक्शन कॉलों तो छुटकारा, बिना ब्याज निकिया निकिया किश्तां। कॉल करो कनाडा कंज्यूमर क्रेडिट असिस्टेंस 416-502-3100। कर्जे तो परेशान, असी करांगे काम आसान। 416-502-3100।
1: इमेजिन करो कि तुसी एक घर खरीदना चाहते हो, सोना जिया क्यूट जिया घर, वधिया लोकेशन एंड इन बजट। यू देन कॉल योर फ्रेंड्स, देन दे कॉल देयर फ्रेंड्स एंड दे कॉल यू बैक सेइंग लब दांगे वरी ना कर। तुसी थोड़ा जा वरी कर दियो, समझ नहीं आ रहा हुंदा की करिए किवें करिए, देन सडनली तुसी ए कमर्शियल सुन दे।
2: दिस इज हरजिंदर गिल फ्रॉम रीमैक्स गोल्ड रियल्टी। यू गॉट इट राइट, जस्ट कॉल हिम एंड यू आर सॉर्टेड। लोकेशन, प्रॉपर्टी, बजट, मार्केट सर्च, एवरीथिंग। हरजिंदर गिल ते छड़ दवो, तुसी बस मठियाई दा डब्बा तैयार करो। हरजिंदर गिल 647-400-6862 और विजिट teamharjindergill.com, हेल्पिंग यू टू फुलफिल योर रियल एस्टेट प्लान्स।
3: इश्तिहार है तब व्यापार है, अपना बिजनेस प्रमोट करने लिए संपर्क करो 647-400-6862 G Media Group।

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए। Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.
1: इश्तिहार है तो व्यापार है, अपना बिजनेस प्रमोट करने लिए संपर्क करो 6974008 6474006862 जी मीडिया ग्रुप।

0: बच्चों में सरमाया कारी करें, क्लास साइज दुरुस्त करें। एलिमेंट्री टीचर्स फेडरेशन ऑफ ऑन्टेरियो की जानिब से एक पैगाम।
1: दिस इज AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
2: काउंटिंग नहीं ए ते 32 55 80 ते 98 इंच दे टीवी ने जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने इन्ना गोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलनगे हर ब्रांड बहुत ही बढ़िया प्राइस ते 32 तो 98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने
3: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 बोवे ड्राइव नियर चिंकोजी कॉल 905-450-2828 905-450-2828

0: किन ले आज ही कॉल करो 9056781200 9056781200 कटारिया टूर्स एंड ट्रेवल
1: 32 55 80 98 81
2: गलत काउंटिंग सिखाई जाने हो
1: काउंटिंग नहीं एते 32 55 80 ते 98 इंच दे टीवी ने
3: जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने इन्ना कोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलनगे हर ब्रांड बहुत ही बढ़िया प्राइस ते 32 to 98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने
2: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 बोवे ड्राइव नियर चंगोजी कॉल 905 450 2828 905 450 अठाई अठाई

0: varieties. Dixie and Dairy de bilkul nazdeek. Call 905-671-1800 905-671-1800.
1: Conditions apply.
2: बाबा जी मैं बहुत तंग हां की करा मेरा घर वाला रोज शराब पी के आंदा घर इतना कलेश हुंदा मेनू दसो मैं केड़ा वर्त करा
3: बेबी है तो औखा
2: हां जी
3: पर जे तू रख ले दा करे लड़ाई नहीं होगी
2: मैं कुछ ही करन नु तैयार हां तुसी बस दसो मैं केड़ा वर्त रखा
3: मौन वर्त
4: फट्टे मु तेरे
5: इंडियन फ्रूट लैंड ते सुपर डुपर सेल लगा देती है शेर देसी स्टाइल आटा 10 पाउंड 699 दा स्वर्णा चक्की आटा 20 पाउंड 1099 दा मस्टर्ड ऑयल 5 लीटर दी वड्डी बॉटल 1999 दी 2% दूध 4 लीटर 499 हल्दीराम दे दो स्नैक चको 399 दे ब्राड वेजी बर्गर 499 बाल्टी जो गोडलो 5 किलो 899 टाटा टी 1 किलो 999 दी ओनली हाईवे 10 ते सैंडलवुड वाली लोकेशन ते हुंदा है सेविंग दा दूसरा नाम इंडियन फ्रूट लैंड
6: Gentlemen, introducing from CHLO AM 530, the number one radio host in the world, Dave Tatla. From the Dave Tatla News Desk, locally covered, nationally connected.
5: Afternoon, welcome to Dave Tatla Show. आज के प्रोग्राम में बहनों और भाइयों आप सब का स्वागत है। आशावादियां उम्मीद करते हैं तुहाडा अज दा दिन अच्छा गुजर रहा होगा। साडी कोशिश रहेगी अगले एक घंटे विच नैशनल इंटरनेशनल खबरां नाल जोड़ के रखिए। हरप्रीत सैन जी भी आ रहे ने, उन्हां नाल भी गलबात करावांगे। जस्ट स्टे ट्यून्ड। अपने ने कोई भी गलबात करनी है, नंबर ने 416-677-0609, 677-0609। जिस तरह जानकारी दिती थी पिछले दिन ही कि चार मुंडे नु डिपोर्ट किया गया है इथों, जिहड़े कोई ना कोई क्राइम किया सी। टोटल 100 तो वध डिपोर्ट कर दिते ने। पिछली बार जिहड़े डिपोर्ट किए थे पलविंदर सिंह, जसमेर सिंह, साहबजोत ते अमित जो बाजवा, इन्हां नु डिपोर्ट किया है। वैसे जे देखा जावे मई 9-2022 दी गल आ, बीसी दे विच कपल सी जिहड़ा घर दी सफाई करांदे सी किसे तों, जिहड़े सफाई करन गए सी उन्हां ने ही उन्हां नूं कुट कुट के मारता। थोड़े बहुत जिहड़े पैसे सी ओह लै के भज गए, बाद तां फड़े गए सी। और जदों भज्जे ने उन्हां विच गुरकरण सिंह ते खुशवीर तूर ते अभिजीत सिंह ने, ते इन्हां दे फर्स्ट डिग्री दे मर्डर लगे ने। ते उन्हां दा परिवार कह रहा है कि काश इन्हां नूं पहलां ही डिवोर्ट कर दित्ता गया।

0: मैनू एक गल दस, तू अपनी पहली गर्लफ्रेंड क्यों छड़ दी?
1: ओ यार पागल सीगी।
0: क्यों?
1: ओनू मैं फोन करना, उन्हें फोन चुकने की बजाय बादरी ने रिंगटोन ते नची जाना।

0: 416-725-2551.
1: स्टडी वीजा, एक्सप्रेस एंट्री, कैनेडियन एक्सप्रेस एंट्री, स्पाउसल फाइल, पेरेंट्स पीआर, सुपर वीजा, नैनी, वर्क परमिट, फार्मर, इन्वेस्टर या सेल्फ एम्प्लॉयड दी फाइल, गल की इमिग्रेशन दी हर प्रॉब्लम दा सॉल्यूशन लैन लई कम्युनिटी दे जाने पहचाने अते तजुर्बेकार इमिग्रेशन कंसल्टेंट गैरी विर्क नु मिलो।
2: कोई केस रिफ्यूज हो गया या अपील ते चला गया, होवे इमिग्रेशन दा कोई भी मसला, हमेशा याद रखो इको ही ना अते इको ही था CIC इमिग्रेशन। हुणे ही कॉल करो 416-456-6161।
3: कनेडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई।
4: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सम्राज सिद्धू तो ही करवाई है।
5: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो ता सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सम्राज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने। पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-455-3381 ते 416-457-3381।
3: नाली जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो। बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाओगे। हुने ही सम्राज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-457-3381 416-457-3381।
6: दोस्तों सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब।
7: टोरंटो गेट रेडी, पंजाबी विरसा रेडियो एंड टेलीविजन, रियल्टर राव सिंह, सेलुलर पॉइंट्स, ए टू जी किचन कैबिनेट एंड रियल्टर हार्प गरेवाल प्रेजेंट द सेंसेशनल हंस राज हंस।
8: दोस्तों देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो या चलो AM 530 ते 24/7 जिन्ने भी प्रोग्राम आउंदे ने उन्हां नूं सुनन वास्ते जां देश प्रदेश नूं लाइव देखण वास्ते लॉग इन करो साडी वेबसाइट नूं www.deshpradeshradio.com या www.deshpradeshtv.com। लाइव सुनना चाहुंदे लाइव ते क्लिक कर लो, जे वाच करना चाहुंदे हो तां ओह ते क्लिक करो, जां फिर अपने IPTV बॉक्स दे उत्ते पंजाबी सैक्शन क्लिक करो, ओहदे उत्ते जाके देश प्रदेश टीवी नूं क्लिक करो, ओहदे तुसीं सुन भी सकदे हो, वेख भी सकदे हो 24/7।

बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट।